नहीं पंच कोशों में से कोई हूँ, न मैं वाणी हाथ पैर और न मैं जनेन्द्रिय हूँ, मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ, मैं शिव हूँ।

मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ, न मैं भोजन हूँ, न खाया जाने वाला और न खाने वाला। मैं चैतन्य हूँ आनंद, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ।

सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझमें मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, मैं शिव हूँ।

में सबका स्वागत है. वेलकम एवरीवन. आई एम रेडी और मैं प्रेजेंट करने आई हूँ इंडियन प्रोग्राम उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स. और यस, इट्स द फिफ्थ संडे और मैं ये प्रेजेंट करती हूँ हर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ संडे को. और अगर कभी बीच में कोई स्किप हो जाए तो देन आई कम इन. और जब भी बीच में मेकअप शो के लिए. सो यस, इस महीने आई हैव डन फर्स्ट, फोर्थ एंड टुडे इज़ द फिफ्थ संडे एंड आई एम हियर 6 to 7 PM. आई ब्रिंग दिस प्रोग्राम और यस, ये दिस प्रोग्राम ये मैं प्रेजेंट करती हूँ इंग्लिश में, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. एंड यस, वी वेलकम नॉन हिंदी स्पीकिंग लिसनर्स एज वेल. और आप इस शो को कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप से भी सुन सकते हैं. और अगर आप ड्यूरिंग द शो कोई मैसेज सेंड करना चाहें तो द टेक्स्ट लाइन इज़ 0497102000. इट्स 0497102000. और मैं ये प्रोग्राम को जैसे कि इंडिया में जो भी शुरुआत होती है वो स्पिरिचुअल टच से होती है, तो यस, अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया तो यस, स्टार्टिंग में जो हमने सुना ब्यूटीफुल संस्कृत चैंट एंड हिंदी ट्रांसलेशन भी थी उसमें, बहुत ब्यूटीफुल. और अभी मैं चलाने वाली हूँ गायत्री मंत्र, जो कि विच इज़ द यूनिवर्सल प्रेयर और इनवोकिंग विजडम, हायर विजडम एंड हायर कॉन्शियसनेस. So yes, I'm gonna play Gayatri Mantra, and I've played this a few times and hopefully in a few more times, and then yes, ye yaad hi ho jane wali cheez hai. So I am going to play Gayatri Mantra and usi se hi aage fir we'll start with thoda Bollywood. Aur yes, that's the plan.

मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स। और यस, गायत्री मंत्र कितनी वर्ड्स के उच्चारण में ही कितनी शांति फील होती है, एंड या सच कामिंग इफेक्ट, एंड कुछ सुकून मिलता है ना। तो यस, ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू प्ले, अब इसमें नेक्स्ट मैं अब सॉन्ग प्ले करूँगी। ये पुराना सॉन्ग मैंने पहले भी प्ले किया है, ये बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, और लास्ट टाइम मैंने आई थिंक शेयर भी कुछ किया था, पर आज आई वॉन्ट टू प्ले दिस अगेन, तो दोबारा से ये प्ले कर रही हूँ, एंड आई होप यू लाइक इट एंड

और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स। एंड यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितना मीनिंगफुल। और या ऑल राइट, अब मैं कुछ बीट्स चलाने वाली। मुझे इस सॉन्ग की बीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, सो आई एम गोना प्ले दिस बिल्कुल टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट आई जस्ट प्लेड। सो यस, ये मुझे इस पूरी झूमने वाली बीट्स हैं। सो यस, ऑल राइट, सो

97.1 FM 3MDR. You are listening to Ready and I'm presenting Un Rangon Ki Uran. And yes, what a beautiful, iski beats kitni achhi hai, just absolutely my kind of beats. I just love them. And I just had Tony, he came in to say hello and he's just given me a beautiful gift. So, and this is a banner he's given to me, and is pe do buddhas bane hue hain aur bahut sundar. I love quotations. और इस पर बहुत सुंदर एक कोटेशन, एक बहुत सुंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं. दिस इज़ रेड एंड ब्लैक कलर का, अराउंड 1 meter लॉन्ग, एंड इस पर इट्स ब्यूटिफुल. आई एम जस्ट गोना शेयर दिस द वर्ड्स इस पर जो हैं. और इस पर लिखा है, एम फॉर सक्सेस नॉट परफेक्शन, नेवर गिव अप बिकॉज देन यू लूज द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ. Beautiful. Thank you so much, Tony. I'm gonna have this अपने सामने ही कहीं पर भी जहाँ पर भी रखूँगी. But this is beautiful. I loved it. Usually I'm a bit hesitant कुछ लेने से, but ये इतना सुंदर लिखा हुआ था, I just couldn't say no. And yes, beautiful. Thanks again, Tony. और अब मैं next song चलाने वाली हूँ. ये भी मुझे बहुत interesting लगता है. आज मैं अपने जो मुझे पसंद हैं, जो dance वाले खास करके, जिसमें I mean हो सकता है कितनों पर dance, तो किसी पर भी किसी भी तरह की आवाज़ पे हो सकता है. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं सोच रही हूँ स्किप करूँ क्योंकि टू मच हो जाता है कभी कभी. बट एक आई वॉज लिसनिंग टू एक आई थिंक दिलजीत जो दोसांझ की एक इंटरव्यू थी, और उस पर I just love dance का, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस. और कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ म्यूज़िक पे, इट्स जस्ट यू नो यू जस्ट इट्स सो ईजी. और मेरे ब्रदर ने एक बार ही मेरा एक वीडियो बनाया, आई मीन आई डेंट नो कि ही वॉज मेकिंग अ वीडियो, पर उसमें एक वो टैप हैमर आई थिंक होती है जो आवाज़ वो आती है. तो एक बार हम लोग कहीं गए कैंपिंग के लिए गए हम लोग, और वहाँ पे कैंप साइट पर ऐसे एक टैप थी जो बहुत आवाज़ करती थी. एंड मैं अपनी धुन में एक बार आई जस्ट स्टार्टेड उसी पे, एंड आई डेंट नो दैट ही मेड अ वीडियो, एंड देन ही टीज्ड मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. और अब भी जब उसको मौका मिलता है तो ही डज दैट टू मी. एंड इन माई डिफेंस, बिकॉज ही इज़ नॉट द काइंड हु जो डांस वगैरह में इतना, तो मैंने उसको एक वीडियो दिखाया अभी. उसमें दिलजीत तो सांझ का था, एंड वो आई डोंट नो कहाँ पे किसी जगह पे US में कहीं पर इंटरव्यू कर रहा था. तो उसको पूछा जो उसका होस्ट था, उसने कहा कि डांस कर हाँ, और कि यू नो कि थोड़ा डांस हो जाए. तो यूज़ लाइक कि यस, तो यूज़ लाइक कि कौन किस तरह का म्यूज़िक, एंड देन टिपिकल पंजाबी स्टाइल में ही सेड कि पंजाबियों का क्या है, वो तो जनरेटर, जैसे वो इंडिया में जनरेटर्स की वो पुराने स्टाइल के जो वो बहुत आवाज़ करते हैं, लाइक पूरी एक वो जैसे ट्रैक्टर चलता है तो वैसे आवाज़ करते हैं. ही सेड पंजाबियों का क्या है, वो तो जनरेटर की आवाज़ पे भी डांस कर सकते हैं. सो यस, इट्स नॉट जस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तो अभी ये जो तो खैर ये तो प्रॉपर सॉन्ग है, इस पे तो बहुत कुछ हो सकता है. सो आई एम गोना प्ले दिस, बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है. एंड या हॉले हॉले

93MDR, you're listening to Reri, और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान, the flight of those colors. और yes, beautiful, पुराने अल्फाज, नया अंदाज, कितना beautiful combination था, soft सा and impactful. और जो पहले मैंने song play किया था, हौले हौले, उसमें एक बड़ी interesting सी line लगती है मुझे, sometimes I question that, और वो थी, रब दा भी रब कोई होना, and yeah, I wonder at times कि उसका कौन रब है. सो या ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैं एक और ये प्ले करने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग.

रेरी और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की उड़ान द फ्लाइट ऑफ दोस कलर्स. और अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगा यू वांट टू शेयर अ थॉट कुछ भी तो यू कैन सेंड अ टेक्स्ट ऑन स्टूडियो टेक्स्ट लाइन इट्स 0497102000. और अब मैं ये पंजाबी चलाने वाली, ये भी बहुत अच्छा सा है आज. इट्स एन या मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सो.

97.1 FM 3MDR. You're listening to Ready, and I'm presenting Un Rangon Ki Udaan, and that's a beautiful song. बहुत अच्छा सा है ये सॉन्ग और उसमें एक थी लाइन आई मीन काफ़ी सारी लाइन्स ही इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं पर ये या तो कख बन जा या कमाल बन जाओ बस और राइट ये लास्ट सॉन्ग है जो मैं प्ले करने वाली हूँ ये पूरा नहीं हो पाएगा बट दैट्स ओके जितना भी हुआ और एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई शो टुडे और आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे 6 to 7 PM एंड दिस इज़ रेडी और यस दैट्स ऑल फ्रॉम मी एंड यस मैं यहाँ हूँ